0: एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् उद्धारकार्यं विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणकार्यं च व्यवस्थितं विधातुं नेपाल प्रहरिणा रसुवा जनपदस्य टिमुरे स्थानात् नवलपरासी जनपदस्य त्रिवेणीस्थानं यावत् क्षेत्रेषु विशेष योजनां निर्माय कार्यं विधीयमानं वर्तते। योजनायाः अन्तर्गतम् अधुना अन्वेषणोद्धारकार्ये सुनाम् प्रयोगः, सुरक्षितावासानां व्यवस्थापनं, समुदाय प्रहरी सहकार्यकार्यक्रमः, अपराधनियन्त्रणम्, अनुसन्धानादि कार्यं च प्राथमिकतायां संस्थाप्य विधीयमानं वर्तते। जलप्लवस्य कारणेन भोटे कौशिकी नद्याः त्रिशूली नद्याश्च तटीयक्षेत्राणां विभिन्न स्थानेषु नद्या प्रभावितानां जनानां जीवितावस्थायां विद्यमानस्य सम्भावनाम् उच्च प्राथमिकतायां संस्थाप्य उद्धारान्वेषणयोः कार्यं विधीयमानम् अस्ति। भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवे निपत्य मृतानां जनानां शवानां निश्चयनस्य सत्यापनस्य च कृते सहस्रत्रयं पञ्चषष्टिश्च निदर्शनानि सङ्कलितानि वर्तन्ते। सङ्कलितानां निदर्शनानां नेपाल प्रहरिणः केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायां खुमलटारवर्तिन्यां नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य प्रयोगशालायां च वंशानुगत जीवाणोः परीक्षणं जायमानमस्तीति प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्ले असूचयत्। नेपाल प्रहरिण विशेषज्ञ समूहाय सहयोगं विधातुं भारत चीन दक्षिण कोरिया सिङ्गापुर देशानां विज्ञाः नेपालं प्राप्ताः वर्तन्ते। प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालायां भारतीय विज्ञ समूहेन कोरिया देशीय समूहेन च खुमलटारवर्तिन्यां प्रयोगशालायां भारतीय समूहेन चीन देशीय समूहेन च सहयोगो विधीयमानो वर्तते। भोटे कौशिकी नद्यां दुरापन्नस्य जलप्लवस्य पश्चात् उत्पन्नां स्वास्थ्य समस्यां विचार्य महाराजगञ्जवर्तिना नेपाल प्रहरी चिकित्सालयेन नुवाकोट जनपदे पञ्चानां शय्यानां अस्थायी चिकित्सालयः सञ्चालितो वर्तते। त्रिशूली नद्या जलप्लवेन त्रिशूली चिकित्सालयेन सह सम्पर्क विच्छेदनस्य समये जलप्लवस्य पश्चात् सम्भावितस्य सङ्क्रमणस्य नियन्त्रणं विचार्य नेपाल प्रहरिणा पञ्चशय्यानां चिकित्सालयः विदुरनगरे सञ्चालितो वर्तते। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालः निगदति नेपाल चीन देशयोः सम्बन्धस्य विषय जलवायु सुरक्षायाः प्रविधेः व्यापार पूर्वाधार विकासयोश्च रणनीतिक सहकार्यस्य रूपेण अग्रे वर्धापनीय। काष्ठमण्डपे ह्य आयोजिते नेपाल चीन सम्बन्ध विषयक कार्यक्रमे परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोटे कौशिकी नद्याः सम्प्रत्येव दुरापन्नेन जलविप्लवेन नेपाल चीन देशयो सीमरेखा केवलं राजनीतिक सीमरेखायाः अपेक्षयापि संयुक्त पर्यावरणीय भाग्यस्य योजक क्षेत्रमस्तीति समस्पष्टयत्। तदवसरे मन्त्री खनाल हिमतालस्य विस्फोटनस्य अनियमित जलवायोः भूस्खलन सदृशानां पारे सीमं जायमानानां विपदां च न्यूनीकरणाय संयुक्त रूपेण कृत्रिमा उपग्रहेण विहितानां तथ्याङ्कानाम् आदान प्रदानयोः संयुक्त जलवायु पूर्वानुमानस्य प्रारम्भिक सञ्चेतना प्रणाल्याश्च विकासस्य प्रस्तावम् अकरोत्। कार्यक्रमे नेपालस्य कृते चीनदेशीय राजदूत चाङमा ओमिङ, चीन नेपालाभ्यां हिमालयस्य पारिस्थितिकीय प्रणाली संयुक्तास्तित्यतः जलवायु परिवर्तनस्य समस्यां प्रतिकर्तुं देशद्वयेन एकताबद्धतया अग्रे वर्धनीयमित्यत्र बलं दत्तवान्। सल्यान जनपदे पृथक् पृथक् यातायात साधनानां दुर्घटनाद्वये निपत्य चत्वारो जनाः मृताः वर्तन्ते। त्रिवेणी ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रस्य सिम्कस्थाने बोलेरोयान दुर्घटनायां निपत्य त्रयः, त्रिवेणी ग्रामपालिकायाः तृतीयवडा क्षेत्रस्य टाडके स्थाने दुरापन्नायां मोटरसाइकल यान दुर्घटनायां निपत्य एकश्च जना मृताः सन्ति। त्रिवेणी ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रस्य सिम्कस्थानात् दाङ जनपदस्य तुलसीपुरस्थानं प्रति आगच्छत् बोलेरो यानं सिम्कस्थाने एव दुर्घटितं सत् त्रिवेणी ग्रामपालिकायाः षष्ठवडा क्षेत्रस्य पोखरी स्थानस्य अष्टमवर्षीय रेशम बुढा थोकी पञ्चमवडा क्षेत्रस्य सल्लेकी स्थानस्य अष्टादश वर्षीया विपना बुढा थोकी पञ्चाशत् वर्षीय दिल्ली बहादुर ओली च मृताः सन्ति इति सल्यान जनपद कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। यान दुर्घटनायाम् अन्य त्रयो जना आहताः सन्ति। आहतानां जनानां घोराईवर्तिनी सञ्जीवनी चिकित्सालये उपचारः विद्यमानो वर्तते। एवमेव सल्यान त्रिवेणी ग्रामपालिकायाः तृतीयवडा क्षेत्रस्य ताटके स्थाने मोटर साइकल यानस्य पश्चभागे आरूढ दाङ जनपदस्य शान्तिनगर ग्रामपालिकायाः प्रथमवडा क्षेत्रस्य पेदी खोला स्थानस्य आसन पञ्चत्रिंशत् वर्षीया जिता केसी मोटर साइकल यानस्य चक्रिकायां वस्त्रस्य वेष्टनेन दुरापन्नायां दुर्घटनायां मृता वर्तते। भोटे कौशिकी नद्या जलप्लवेन फुर्के खोला स्थानस्य सेतोः प्रवाहणानन्तरं धादिङ बेसी स्थानस्य प्रापकस्य वैकल्पिक मार्गस्य रूपेण प्रयुक्त परेवाटार मास्टार मार्ग समय निर्धारणं कृत्वा एकपक्षतः सञ्चालितो वर्तते। सङ्कीर्ण मार्गस्य कारणेन पक्षद्वयात् एकस्मिन्नेव समये यातायात साधनानां सञ्चालने सति यातायातस्य व्यवस्थापने कठिनावस्थायाः सर्जनस्य पश्चात् जनपद प्रशासन कार्यालयेन निश्चित समयं निर्धार्य एकपक्षता यानसाधनानां सञ्चालनस्य व्यवस्था विहिता अस्ति। इति समाचाराः।
1: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका स्रोत दूषित हुन सक्ने भएकाले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिऊ।
2: पानी उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पियौ। शुद्धिकरण गरिएको पानी सफा र छोपिएको भाँडामा राखौ। खाना खानु अघि, खाना पकाउनु अघि, शौचालय प्रयोग गरेपछि र बच्चाको दिशा सफा गरेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धो।
1: सडे गलेका वा झिङ्गा भन्केका खानेकुरा नखाऊ। झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड वा अन्य रोगका लक्षण देखिएमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ।
2: सुरक्षित पानी र सरसफाइका अभ्यास अपनाऊ। आफू र परिवारलाई रोगबाट जोगाऊ।
1: थप स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शका लागि निशुल्क स्वास्थ्य हटलाइन नम्बर 1115 सम्पर्क गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
1: विपदको समयमा बाल बालिकामा डर, चिन्ता, तनाव वा असुरक्षाको महसुस हुन सक्छ। उनीहरूका कुरा ध्यान दिएर सुनौ, उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरौं र सुरक्षित तथा सहयोगी वातावरण बनाऊ।
4: समस्या बढ्दै गएमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिन नहिचकिचाऊ।
1: आपतकालीन सहयोगका लागि बाल हेल्पलाइन 1098 सम्पर्क गरौ।
4: बाल बालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गरौ, उनीहरूलाई सुरक्षित र सहयोगी वातावरण दियौ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।

थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जिउ पेस पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्से सौ पी कुद येला थो द्वितीय रसोहाया पोटिकोसी खुसी पाला मधुपनीको ल्या चिन्सो सौ चे नेम थेङ्गो दो केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिनारायण काप्रे कथ चिनिस व सुइगु सिम व्यवस्थापन यागुदो सिम सिकेत चिनिस चे खुगु सिम व थतिथि पाखे चिन च्यास व पी खुगु याना सुई छस व सुई निगु डिएनए मुङ्कुगु दो प्रहरी प्रधान कार्यालय कथ आतक पेदो व चे गुम मोनु तनाचुङ्गुदो उमित माले त नेदो नेपाली प्रहरी छेला चुङ्गुदो होल्डिङ सेन्टरे नि नेस व चिन्नी म मनुते त तया तगु तहागुदो सरकार शिक्षा त बिहारी कोशीमूलक देखिएको तातुना बुक फ्री फ्राइडे ओ स्किल इन एजुकेसन अवधारणा वैगो शैक्षिक सत्र निषेध देनिङ्क छेलितिङ्गुदो शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 परिमार्जन या नीति सरकारवाल नाप सल या ढङ्कुगुदो मिग शनिबार सिरहा ओ सप्तरी थिथि बनेको थिए गोसा गो गु ज्याजोसँग वेक्न थथे धाइदिएको ख विद्यार्थी शिक्षक व स्वाबुदुगु निकाय पाके वगु प्याची ख या लिदस्या नुगु सफु कोचिगु व वैगु शैक्षिक सत्र छेलेगु वेक्न खनादिको ख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नेपाल चीन स्वापुयात जलवायु सुरक्षा प्रविधि व्यापार ओ प्रवाधार विकास या लिदस्या रणनीतिक साझेदारी रूप न्याने न्याकेमा धाइदिगुदो मिग ए गोसागो गो ज्याजोसँग वेक्ल नेपाल चीन या सीमा रान्तिक सीमा रेखा जक मजुसे मङ्का कथया पर्यावरणीय स्वापुदुगु नेता दिल ज्याजोसँग नेपाल नीति चिनिया राजदूत चाङ माओमिङ चीन व नेपाल जलवायु या त मो या त छप्प छदि जुइमाको खे ब ब्यादिल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कजी पुष्पकमल दाल प्रचण्ड खुसी बाल पीडित पिन्त अस्थायी व्यवस्थापन नाप स्थायी रूपमा देखेको व हाक्न पुलिसलाई याको ज्यादा प्राथमिकता ते मागु खे ब ब्यादिगु दो धादिङ या गल्छी खुसी बाल पीडित पिन्त अनुबना स्वेधुङका वेक्ल थथे धाइदिगु ख खुसी बाल आफल मनोत मधुगु व भौतिक संरचना सिङ्कुगुली आ हाक्न देखे त प्याचे नक्सा सरकार ज्या यामा थैदिल नेपाल व चीन या उत्तरी कोरला नाका लोमाङताङ चार ढे चुङ्गे दुगु मुस्ताङ पन्सार ज्याको पाखे चिन्यानु दुने छगु अर्ब ढे च्यागु करोड पी सङ्गु लाख राजोस मुङ्कु गुदो रसवाया पोटिकुसी खुसी बाल केरुङ नाका पुङ्क सिङ्गुली कोरल नाका छगु पन्सार प्रमुख विदोर चुडाल धाइदिएको ख जिल्ला प्रशासन ज्याको झापा पालो आवेदन शून्य याङ्केगो अभियान कथ सार्वजनिक विधा या नि तक राष्ट्रिय परिचय पौ व राहदानी सेवा लल ह्यागु धाइदिगुदो अनलाइन आवेदन फारम भरे याना बायोमेट्रिक व मेमेको प्रक्रिया नीति पिया चुपिन्त आ अफुइगु प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल धाइदिएको ख फुटेको सी खुसी बा फुर्के खोला या ता चुइका याङ्कु लिई धादिङ बेसी याङ्केगु नीति वैकल्पिक लप्पु कत छगु परेवाटार मास्टर सडके मिग निसे छकेर न्याकु गुदु ल ची ब्यागुली निखेर छक्लन्तु निगु पाखे सवारी जोलो न्याके त हात्या ओङ्गुली थो हात्या झ्याङ्के त यी तना छकेर न्याकु गु जिल्ला प्रशासन ज्याकु धागु ख भोटेकोसी खुसी बाल विस्थापित मस्तेत विद्यालय छुएगु न्याको गुदु रसुवा पोटेकुसी खुसी बाल विस्थापित जुवा यी चुना चोपी सची हो सुई निम मस्तेत गीता माता स्कुल दल्लुई बोङ्केगु न्याको गुख ए महानगरपालिका या कार्यवाहक प्रमुख सुनिता ढङ्गल बच्चन व बिहार मस्तेत थप खा ल्याफु वेकपित आत्मीय बिहारेना बोङ्के त शिक्षक तेत इना यानादिल विद्यालय या प्रधान अध्यापक हरिकृष्ण श्रेष्ठ तसक चिन्ता लापिन्त विद्यार्थी त बल याना ओहे मा धागुमकु परामर्श बिया बुलु सामान्य अवस्था हेगु कुत जुया चङ्गु जानकारी बिया दिल भदौ 23 गते चाइनिसिया इले वोगु भुखा
लिपा उपलो मुस्ताङ लुमाङथाङ गाउँपालिका जलखला शिक्षक विद्यार्थी त्रिपाले चुनित बाध्य जुगुदो लुमाङथाङ केन्द्रबिन्दु जुया बोगु पुखा चिएको प्रत्यक्ष सेङ्का ब्युगुली त्रिपाले चुनित बाध्य जुगु थागुदो सल्याने निगु ब्याग्न ब्याग्न झाकेलाना पेम मनुत सिगुदु धासा सोम खापा जुगुदु त्रिवेणी गाउँपालिका पाँच सिमक दाङ्या तुलसीपुर वया चुङ्गु बोलेरो सिमके झाका जुगु ख अथे सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका तिन तात्के मोटरसाइकल झाका जुगु ख किपु बुद्धिजीवी अभियान मिग किपुया न्यामसीमा दुगो नेपाल भाषा एकाडेमी जेन्जी आन्दोलन या लिपाया अवस्थाबारे सोगु ज्यापौ न्यबगुदु प्राध्यापक डाक्टर शिव शरण मर्जन हेलुवा दुगु अभियान न्याकुगु विचार गोष्ठी रान्तिक विश्लेषक तुलसी दास मर्जन युग पाठकको अधिवक्ता मोतीलाल नेपाली ज्यापौ न्यवादीको ख गोष्ठी नागरिक हेलुवा व संविधान सभा दुज श्याम श्रेष्ठ रान्तिक विश्लेषक राजेन्द्र मर्जन प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रकाश मर्जन झलक सुविधी पिन्स थथको खन ह्यव्यादीको ख वेक पिनिगो धापो खत आया सरकार जेन्जिया इनाप्यात इले जेङ्केत व्यादीको ख नेपाल पञ्चाङ निर्णायक विकास समिति थुसिया ए या साहित सार्वजनिक यागुदो ए या नख या प्रक्रिया यलातो द्वितीय निश्चय न्याय ए या यसी थनित सीमा पाउने त वन यात्रा या वनिगो साहित भदौ 28 गते आइतबार सुतेसिया 9 बजे जुया 53 मिनेट जुगु समिति नायो लिसे स प्राध्यापक डाक्टर पुरुषराम भट्टराई धैदिको ख सीमा पालेको साहित बनिसिया 8 बजे जुया 47 मिनेट या इले जुगु खोपया चित्तबल वन योसी थनित सीमा पालीको परम्परा दयावया चुङ्गु वेक जानकारी व्यादीको ख योसी नगरे दुत हेगो साइट असोज 3 गते शनिबार सुतेसिया 8 बजे जुया न्यागो मिनेटे डुगु समिति धागुदु योसी थनेको साइट असोज 7 गते बुधबार सुतेसिया 7 बजे जुया 47 मिनेट ए जुगु न स प्राध्यापक भट्टराई कनादिल थते ए या मु दिई खुनु असोज 9 गते शुक्रबार कोने त्वाले यात्रा याइ थुकुनु हे राष्ट्रपतिले चाहिँ अति विशिष्ट व्यक्तित्व हनुमान ध्वाका या गद्दी बैठक हुना कुमारी यात्रा अपकन याईको परम्परा दया चुङ्गु वेक्ल नेतनादिल असोज 10 गते शनिबार थने त्वाले यात्रा याइ असोज 13 गते मङ्गलबार मिस्तेसन जग रथशाला नानी चाहिया उनी थोहे दि खुनु बहनी 9 बजे 25 मिनेटे यसी कोथलेको साइड डुगु समिति धागु ख यसी कोथले थुङ्का बहनी राष्ट्राध्यक्ष कुमारी गणेश व भैरव दर्शनीना प्रसाद ग्रहण यादुङका चिन सोनु ताहाको गु ए या कोचाई चन्द्रमास कत गुलातो पारुनिसे यलातो पारु तक सोनिगलिसे थन चोपी नेवा समुदाय हनिगु गुला नख मिग कोचाल नखया झोले मौलिक बाजा गाजा लिसे पारु भे ने गुलिसे थिति धार्मिक गतिविधि याइगो परम्परा दु गुला नखया अन्तिम दि खुनु विधि पुङका विशेष पूजा आराधना याना लक्षिया व्रत कोचाई गुला धर्म नेवा समुदाय तेगो महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक नख ख विशेष याना सोनिग बौद्ध नेवा समुदाय विशेष महत्व या थो नख हनि थो नखले मौलिक बाजा थाना हाकु पर्सी सिना तपी मिस्तेस बौद्ध चैत्य इष्ट देवता गणे देव भीमसेन भैरवली सेन देव या देगले चाही लि नाप दर्शन याईको परम्परा दु नखले विशेष याना नौ बाजा थाइगो चलन दु पास्त धा ढोलक पछिमा धिमे नगरा नाकी कोचाखी व दबदबा लिसेन बाजा नाप पुसिया मुहाली सिछ्या बौचा टी धुलु चतिचा व पङ्गाल लिसे साग बाजा थाइ गुला नखले थाइगु बुजा जु बाजा जुग्ली थो वाद्य यन्त्र ते त गुला बाजा ध्यागुन परम्परा दु नेपाल पञ्चाङ्ग निगार विकास समिति विक्रम सम्ब 2084 पात्र अत्यधाइगु नगुमा पिथने मास्ती ओपी पञ्चाङ्गकार तेत वैगु असोज 20 गते दुनि नगुमा गणना गणित पेस या त इनाप यागुदो समिति पञ्चाङ्ग खण्ड या सौरोक्त पद्धति पाखे व मेमेगो ग्रह तेगो गणना केतकीय पद्धति या त सूचित यागु नायो सह प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम भट्टराई जानकारी व्यादीको ख असोज 20 गते दुनि फुक्क विषयवस्तु दुथाका तगु पञ्चाङ्ग पेस या त इनाप यागु न वेक्ल खनान्दिल विक्रम सम्ब 2000
त्रियासी या पात्र तख थहे पद्धति स्वीकृति बिगुख नुपी पञ्चाङ्ग कार्तेस लाथी च्वातगु सोध अथे धैगु 2084 निसे 2086 तक या गणित या मसुद पेस यामाको समिति पित बोगु सूचना नेतना तगुदु नुपी पञ्चाङ्ग काड पञ्चाङ्ग गण फुक आधार नाप विषयवस्तु या खेस रहन समिति ललह्याम गु निर्णय समिति यागु वेक्ल खना दिल म्याद पुला पेस जुगु अङ्ग मगागु व समिति अङ्गीकार मयागु सिद्धान्त गण यानातगु पञ्चाङ्ग या त स्वीकृति बिमकु पिते पात्रो क्यालेन्डर पितने मास्ती ओगो संस्था ओ मनुख न समिति स्वीकृतिका याजक पिका त समिति इनाप यागु वेक्ल खना दिल नेवान हेलुवा तीर्थराम डङ्गोल्या लुमिति जुगु वक्तित्व कला धेन्देबेला कासा कोसा आगु दु मु पहा ए महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गल मधुम तीर्थराम डङ्गल थ त थगु त्वा जला खला या जुगु खन हेतना दिसे थ मचबले दक्ले नापा वेक या त नेता कथ मसुगु हेतना दिल ज्याजोले नौना दिसे नेपाल भाषा एकाडेमी या चान्सलर मल्लके सुन्दर मधुम रान्तिक नेवा हेलुवा तीर्थराम डङ्गोल या योगदान या त कया चर्चा हेना दिसे मधुम डङ्गोल छम कर्मठ इमान्दार त्यागी नेता जुगु विचार निहव्या दिल ए महानगरपालिका 27 वडा अध्यक्ष योगेश कुमार खड्किया सभापति जुगु ज्याजोले ए महानगरपालिका प्रवक्ताले से 17 वडा अध्यक्ष नवीन मानेन्दर पुलाम रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान नेपाल सम्बद 1146 9-10 समारोह समिति नाय प्रेम हिरा तुलाधर पाएको छ चायादिगु ख यहाँ ऐतिहासिक लुहिति ल ह्याकुक नीति छगु कुत न्यागुदो ए महानगरपालिका थनिया 22 वडा धरहरा लिक चुङ्गु ऐतिहासिक लुहिति ल ह्याकेको सम्भावना मालिकको ल्याख अध्ययन ज्या न्याकुकुदु लुहिति चख जख मुखु चाक छि हे तत ढङ्गु भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माण जुई ढङ्गुको थौ या अवस्था लुहिति प्राकृतिक ल ह्याकेको सम्भावना उक्या नीति ल हेगु व निकास मालिकको ल्याख ए महानगर अध्ययन ज्या न्याकु गोख ए महानगर अभियान कन्सल्टेन्सी पाके परामर्श सेवाका या अध्ययन याना चङ्गुदु जमिनको या सतह ल या मात्र अध्ययन या त तिन ख्य या पश्चिम कुना वा मा क द्यो या दक्षिण पाके मुगु तु या निर्चन याना दिसे ए महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख सुन्ता डङ्गल ल या स्रोत निकास मालिक ज्या यी स्थिति मछुए त उज ब्यादिगुदु नेपाल भाषा या कलाकार र सङ्गीतकार निर्देशक सुरेश खड्किया त क्यान्सर लोच कगुदु वेक अरिसिति क्यान्सर अस्पतालले भर्ना जुवा वास याका चुनादिगु दु आर्थिक ग्वाली यानादि त सुरेश खड्की ग्वाली पुचन निसुने धङ्कुगु दुसा आर्थिक ग्वाली मुनिगु ज्यान ह्याके धङ्कुगु ख कलाकार सुरज बेन्जर कारण जानकारी ब्यादिगु ख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गैर कानुनी रूपमा आर्जन यागु सम्पत्ति सूचुकुगु छले यागु रूपान्तर यागु स्वामित्व युपा यागु लिसे सम्पत्ति शुद्धिकरण यागु धासे ए महानगरपालिका तत्कालीन इन्जिनियर रामबाबु महतो कोइरी लिसे पिम विरुद्ध विशेष अदालत ए आरोप पत्र दायर यागुदु आयोग महानगर तत्कालीन इन्जिनियर प्रतिवादी महतो कोइरी ओया चान माला कुमारी महतो रिना कुशबा व कुशबा या भात कृष्ण प्रसाद मेहता लिसे या गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन यागु थका सम्पत्ति शुद्धिकरण कथ मुद्दा दायर यागु ख आयोग महतो या त पेङ्गु करोड पी च्यागु लाख बिगो लिसे मुद्दा दायर यागु आयोग प्रवक्ता सुरेश न्यौपानी जानकारी ब्यादिगु ख ब्रिक्स पुचल पिथङ्गु विज्ञप्ति मध्य पूर्व शान्ति नीति इनाप यागुदु मे नु दिल्ली नाप्लेबले ब्रिक्स विदेश मन्त्रीपिंस मङ्गा कथ थते या त सहमत मजुगु ख डुज दे इरान साउदी अरेबिया संयुक्त अरब इमिरेट्स फेब्रुअरी 28 निसे यागु अमेरिका इजरायल इरानी यागु हमला छप्प मजुगु ख तर थुसी गोसा खल भारत या कुतल थथे या फुगु ख सन् 2006 साले पलिस्ता जुगु थो संस्था ब्राजिल रुस भारत व चीन दुगु ख सन् 2010 दक्षिण अफ्रिका बोती कागु ख आ चिन छगु देश थुकी बोती कया चुङ्गुदु चिलिया दक्षिणी लागे दुगु छगु वृद्धाश्रमे मिनोया मोतिन चिनखुम मुनु त सिगुदु वृद्धाश्रम ए दुपी मध्ये छिम जक मुनुते त सुरक्षित नक्सा पिने पिका त तालागु धागुदु
थौ लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा मो थासे व मध्य प्रदेश नाप कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या तराई लागा मो थासे मे गर्जन न न्याना लाप्सा तोया वा वैगु धागुदु कोशी बागमती प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा व गण्डकी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी लागा छगुनीको थासे आपल वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख सोनिगले मिग नि गुगु फुटिन हेगु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुगु ख थौ थथे जुइगु तुकमा यागुदु सोनिगले न्याता इजुया पिछगु मिनेटे लुगु सूर्य सनिलया कुता इजुया चिन्छगु मिनेटे बी नेपाल भाषी बुक कोचाला शुभ

जो निरामी भाजु मेजुपी हिउ पाह गुनु गस ज्याज जना जिरुबी श्रेष्ठ वे धुन अले थौ या थो ज्याज यातन छिस माया मतिना याना तिब बिया दिजे देखु आशा बल सजिङ कया छ ना निनामी भाजु मेजुपी सदा थे थो ज्याजो आइतबा पति कन सुथेसिया जिता इजिया जिगु मिनेट निसिन छिन छता इतको वे अले थो ज्याज याता छिस माया मतिना याना अलि न्यंग क सोना नेना दिफु ज्ञानि तिन धासा छिस www.radionepal.gov.np व www.onlineradionepal वो रेडियो नेपाल यागुए फेसबुक पेज नापान छिस नेपाल निङ्क चुना 98.3 मेगाहर्ज निरादिफु अले निनामी भाज मेजुपे छिउ छुन कथ्यागु निहस दुसा जिन्थौ दासा पहा बना है गुदु उकि जि जम्मा सोमा स्याजक फोन क्यागु जुइ उकि छिगु छु कथ्यागु निहस दुसा छिस वो विशेष छिस सपुतया दिफु छिगु निस फङ्का दिफु उकिया नीति दासा छिसम 42/1121 42/1136 स्वपुतया दिफु दासा ज्याजन्याका चना गुजुल जिरुबी श्रेष्ठ नापा प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे जिउन अलेथ पहा कथ जीवना हैगुदु येल 21 नम्बर ओडाया प्रमुख रविन्द्र महर्जन अले वेकया मसिका बिमाबले वेक किकु सिङ्करातेया राष्ट्रिय प्रशिक्षक अले वेक 21 नम्बर ओडा न नियक ओडा प्रमुख जुइ धुङ्कल नापा समाजसेवी नख वेक एक समाजसेवा नापा स्वापु दुगु ज्याखन या नदी वेक नक्तिनी भोटेकोसी खुसी बा या पीडित पिन्त वेक्ला राहत न इना वया दि धुङ्क गुदा दु धासा वेक्ला वेकु वाले वेक्ला थिति कथ याको स्वास्थ्य नापा या शिविर न सञ्चालन या गुधैको खन वैक्लन धैदिगु दु थो विशेषण वैक नापा खलागु जुइ धासा अले खोकना धासा त सम्पदा लागा अले अन सरकार थिथि पोइन्ट त लाग गुदु द्रुत मार्ग स्मार्ट सिटी हाई टेन्सन रेलवे बागमती कोरिडोर फुकम फुकम वे थासे लागुदु अले थो विशेष याना अन इले बिले वापु कचौम अले थिथि कथ यागो हाथ्या फेमाला चङ्गु दु थो विशेषण वैक नापा सल यागो जुइ धासा धासा जिनेवातेको राष्ट्रिय मेनेने मेन आफ्ना पञ्चित लस्कु चाहिँ यहाँ नयाँ चुने झासँदा चाहिँ थुमे जी सक्सी अनि दिए

0: आजु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी ढाङनी दा ढेनमुलाक इन्दिरा थिङ जलवायु पोबा थेन लेबा तापक्रम से लामा नेपाल लाग्लिङ ग्योई लेबा निवा भाला जोखिम लेबा मुला चु जोखिम च्याङना लाबारी सरकार से ग्रेन जोखिम रे मुबा सङ्खुवा सबाला माचा बरुन चोलु खुम्बु ला लुम्लिङ छो थेन होङ्गु टु थेन मनाङला ठुलागी ग्लिङ ग्योइला क्वि च्याङना सोबारी ती बामुला जल विज्ञान थिएन किनेर अनुसन्धान केन्द्रला उपनिर्देशक उप कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजन भट्टराई से सुङ्ब अनुसार निचुई दिङ लिचा तोचा हिमाली थुम्री ग्लिङ ग्योई कादेरी क्वि लेबन नि बामुला माचा बरुन ग्लिङ ग्योइला क्वि सोमरारी ब्ली लिटर च्याङना सोबागे लबन मुला गिक्षा रेम्री गोर ब्लिनोन ग्लिङ ग्योइला सर्वेक्षण लासी क्वि च्याङना सोभाग्ये योजना सोसी चु लिछा क्वि च्याङना सोभाग्ये लासे दामुला तिनिन सानगिर बोन कादेथेन लेङ्गो लाचिबान ऊर्जा क्युनेर थेन सिचाई ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से विपत जोखिम च्याङना लाबारी ऊर्जा क्युनेर थेन सिचाई ब्लोन खाङसे ग्रेन जोखिम रिमुबा ग्लिङ ग्योइला क्वि च्याङना सोभाग्ये लाबारी माइबान मुला बिसे सुङबा मुबा ब्लोन श्रेष्ठ से सुङबा अनुसार ग्रीन क्लाइमेट फन्ड GCS ग्याम रो किन्सी विपत जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण थिएन स्थानीय तह थिएन डिक्सी जोखिम रि मुबा ग्लिङ घ्योइला क्वि च्याङना सोभाग्ये चुपाल सेन लाबा बिसी सुङबा मुला इसी मोड थिएन UNDP डिक्सी लाबा अध्ययन डी नेपाल डी गोर निचुई गिक ग्लिङ ग्योई जोखिम रि राङबा मुला सरकार से लोपखाङ स्यार्दा व्यवहारिक थिएन सिप मुलाक सोबारी बिसी बुक फ्री फ्राइडे थिएन क्लिन इन एजुकेसन दाखाबा स्यार सत्र हेन्से तिबारी माइबा मुला स्यार थिएन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेलसे युलबाङ पाठ्यक्रम पारूप 2076 पोबारी सरोकार थान्बा कादे थेन सुझाव किन्बा धुइरी तिलमा सिराहा थेन सप्तरीला लोलो लोलो लोपखाङ रिसेङबा गेकोर्दी चुताम सुङबा किन्ला दाखाबा स्यार सत्र हेन्से लोबोन दा किताबरी जेखेन आथान्ना व्यवहारिक ज्ञान सिफ थेन थुइबालासी लोपखाङ स्यार दा युलबाङ किताब नोन पोबारी माइबा किन्ला बिसी ब्लोन पोखरेल से सुङबा मुला चुराङलासिन सरकार से मधेस प्रदेश री त्रिभुवन विश्व विद्यालयला इन्जिनियरिङ ब्रिबा डोबा घेन्दुन आइओला छार क्याम्पस ठोङबा तयारी लाबामुला स्यार थिएन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेलसे मधेस प्रदेश री प्राविधिक स्यार लेन लाबारी थिएन इन्जिनियरिङ ब्रिबा डोबा लाबारी लोबोन से स्यान्दो प्रदेश री नि आतोगाई बिसी क्याम्पस ठोङबारी माइबा हिन्ला बिसी सुङबामुला सरकार से मधेस री इन्जिनियरिङ क्याम्पस ठोङबा लिछा होजा थुम्ला लोबोन से राङलान प्रदेश री प्राविधिक स्यार किनबारी खाम्बा मानबा मुला भोटेको सी भालग्याम सिबा मिनिला ङोसेबारी आखाम्बा सिबा लुइरो वैज्ञानिका फेदी ग्याम ङोसेबारी युल नाङग्याम सिबा थेन माबा मिनिला डिएनए नमुना किनबा गे लाबन मुला माबा थेन सिबा मिनिला ङेङ्गोर से डिएनए किनबारी ग्याम्बुरी नेपाल प्रहरी अस्पताल थेन स्यान्दो जोङरी जोङरी प्रहरी गेजाङला रोरी जोङ अस्पतालला लुइ कर्मी कदेसे नमुना किनबा लासी मियो विधि विज्ञान प्रयोगशाला रि पुइबा व्यवस्था ढिक्ना लाबा मुला बिसी मियो प्रहरी सुङबोन अभि नारायण काफले से सुङबा मुला भालग्याम सिबा थेन माबा कादेदा ङोसेबारी थेन माबा कादेदा माइबारी दाते धोना सोमचुई निस जोङ ग्याम नमुना किन्बा गे लाबान मुला बिसामा मोकोन भीमा लाना महाराजगञ्जला नेपाल प्रहरी अस्पताल डी नमुना रूपा मुला भोटेकोसी भालग्याम रसुवा नुवाकोट थिएन धादिङला गोरचुइब्रे लोपखाङ प्रभावित ताबा मुला चुनी कादेरी गोरचुई गिक लानन छेती तामा करोड कुचुई सोमसे लाख निश्चुई सोम टाङ्गा छ्यो आछ्योला छेती ताबा मुला युलबाङ योजना आयोग थिएन युलबाङ विपत जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से शोभा छेती थिएन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन डी लोपखाङला दिमखाङ स्यार सम्पत्ति लासी होते छेती ताबा प्रतिवेदन अनुसार गोर चुइब्रे लोपखाङला गोर गाचुई डु दिमखाङ प्रभावित ताबा मुला ग्रेन सेनापति अशोक राज सिग्देल बेजिङ रिताबा चुई सोमछा बेजिङ स्याङ सु फोरम रि पो किनबारी तिनी होजा हुना निस्युबा मुला ग्रेन सेनापतिला चु कोरबा ग्याम युल्नी गुङला सैनिक ब्रेलबा लेबा छ्याम सैनिक कुटनीतिक ग्याम युल्ला रोङसा ठिमरिन रोताबा नेपाली सेना से मानबा मुला जैनिक सैनिक जनसम्पर्क थेन सूचना निर्देशनालय से पाङबा अनुसार सिग्देल आताबा दुरी बलाधिकृत रथी प्रदीप जङ केसी से गे तेन्स्युबा तामुला बिसी पाङबा मुला कपिल वस्तु नगरपालिका डु भर्मेली ला बाण गङ्गा गान्धीरी तिलमा खाबा भाल्डी फस दिबा मेन्दो चुइनी मिनिला सशस्त्र प्रहरी से उद्धार लाबा मुला भाल्से लामा गान्धी थुम्री फस दिबा मेन्दो चुइ गिक जामे कोलातेन मेन्दो गिक झा कोलादा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गण हेडक्वार्टर कपिल वस्तु ग्याम निबा टोली से उद्धार लासी सुरक्षित घ्लारी दोना लाबा हिन्ला कृष्ण भिरी सडक ग्यालम भास्तिबा लिचा बन्द ताबा पृथ्वी राजमार्ग असोज घिक बिमा गाछन ठोङबारी माइबन मुला त्रिशुली गान्धी से थासी भास्तिबा ग्यालम दान थासी ठोङबारी माइबा किन्ला पृथ्वी राजमार्गला मुगलिन मलेको खान्दा शोभा आयोजनाला ग्रेनपो इन्जिनियर डिभिजन इन्जिनियर निरन नियर सजना अधिकारी से ब्रा थाबा गे जिन्बासे दरेम बाँकी घे योनन झिन्ना लाबा बिसी सुङबा मुला काभ्रे पलाञ्चोक जोङला पाँचखाल नगरपालिका सामुदायिक लुई स्वयं सेविका से तिजला धारचाबा टाङ्गा काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोश्री थान्बा मुला पाँचखाल नि सोम ब्ली गाथेन डुला स्वयं सेविका कादेसे चु भदौ चुइला कुनु रसुवाला भोटे कोसिरी भाल पिडिदा तोङ चुइङा ग्यार्जा गासे सिका ब्ली चुइङा रो लाबा खिन्ला बिसी समूहला सदस्य सरस्वती भेटवाल से सुङबा मुला चुराङलासिन नमबु नगरपालिकाला जामेकोला कादेसेनोन तिजला गेखोर आलाना भाल पीडित कादेदा तोङ कुचुई गिक ग्यार्जा सोमसे सिका ब्लिचुई घा टाङ्गा काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोश्री पिन्बा मुला सुन माकाई राङबा बालिरी माकार्से छेती लाबा लिचा स्याङजाला वालिङ चुई सोम तारु खोलाला सानम बोन कादेसे अकाबारे मार्चीला खेती लाबारी तिबा मुला सुन माकाई राङबा बाली ग्याम बिमा मार्ची ग्याम टाङ्गा लाना खाबा थेन माकार्सेन छेती आलाबा ताबासे मार्ची सुबा लेबा निबा हिन्ला बिसी वालिङ नगरपालिका रि सेङबा सानम विकास परियोजना से पाङबा मुला दाते धोना लाख निस्ला मार्ची चुङसी झिन्बा मुला बिसी नामसाला मिनी से पाङबा मुला रोटरी क्लब अफ धुलीखेलसे जोङरी गोर्बली पालिकारी तिरेमान सेङबा टाङ्गा आकिन्ना मि शिविर रि तोङ गिक्से ग्याजा ब्लि मिनिसे मि जाँच लाबा मुला चौतारा साँगा चोक गढी नगरपालिका गा मेलम्ची नगरपालिका चुई गिक बारा विषे नगरपालिका सोमथेन इन्द्रावती गाउँपालिका घारी सेङबा शिविररी मि जाँच लासी मान्नोन पिन्बा मुबा शिविररी ग्याजा गिक मिनिला मोती भिन्दुला अपरेसनोन लाबा मुबा विषी क्लबला शिविर थुतबोन अशोक कुमार श्रेष्ठ से सुङबा मुला थारू थेत्माला ग्रेन पिबा अट बारी सुदूर नुप्थेन लुम्बिनी प्रदेशला लोलो लोलो जोङरी धाङबान मुला अटबरी प्रिबा न्युङ्ने थेन मोइबोला प्रिबा जेखेन आताना थारू थेत्माला दोङराप आस्था थेन मौलिक रिमठिम रिन थुइबा मुला बिसी थारू घोभोन कादेसे सुङबा मुला पहाडी जोङ बैतडिरी चोनोर दिङरी दाते धोना मेन्दो डुरी डेङ्गु ताबा स्याप्पा मुला साउन लारी मेन्दो सोमथेन भदौ लारी मेन्दो सोम लासी मेन्दो डुरी डेङ्गु ताबा स्याप्पा मुला बिबान जोङ लुई गेजाङ बैतडिसे मिनिदा छोरगान पेन्बा गे लाबन मुला रुकुम नोप्ला सानीभेरी गाउँपालिका डुला देउता सेङरी जीप दुर्घटना तामा मेन्दोनी मिनी सिबा मुला तिनी सियोरी वडा नम्बर डुला कोट गाउँ ग्याम गाउँपालिकाला सानी भेरी कु सिमली ताबान खलङ्गा क्यार निबान लाभा जीव दुर्घटना तामा त्रिवेणी गाउँपालिका गिक आरु घाटला सुन्दर खड्का मगर थिएन सानी भेरी डुला चुइडु दिङला प्रेम कला फुनला घटना ताबा घ्लारिन सिबा मुला बिची जोङ प्रहरी गेजाङला प्रहरी नायब परीक्षक वेत बहादुर पौडेल से सुङबा मुला चुराङ लासिन इटहरी उपमहानगरपालिका निसबाल ग्रामला स्यार नुप लोकमार्ग गरी तिनी छोरी मोटरसाइकल दुर्घटना तामा मेन्दो निमिनी सिबा मुला स्यारग्याम नुप्यार निबान लाभा मोटरसाइकल कल भटरी ठोक्सी दुर्घटना तामा मोटरसाइकल री क्रेबा इनरुवा नगरपालिका सोमला सागर रेग्मिथेन पारस थापा सिबा हिन्ला गम्भीर घाइते ताबा थेने कादेला धरानला बिपी कोइराला लुई विज्ञान प्रतिष्ठान डी मन लवन लामा सिबा हिन्ला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ से पाङबा मुला स्यान्चिबान मुभा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज
1: धेरै वर्षा भइरहेको बेला पहिरो जान सक्ने भिरालो ठाउँमा नबस्नुहोस् आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण हेर्नुहोस् सुरक्षित रहन मौसम सम्बन्धी सूचना जानकारी नियमित लिने गर्नुहोस्
3: समयमै सावधानी अपनाई हानि नोक्सानी हुनबाट जोगिनुहोस् बाढी पहिरोबाट बचौँ सुरक्षित नेपाल बनाऊ
1: रेडियो नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: हामी रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ अब केही बेर सुनाउनेछौँ तिजका गीतहरू यसै क्रममा पहिलो गीत राख्दैछौँ यशोदा बिडारी सुमिता भुक्तेल र भोजराज काफ्लेको स्वरमा भोजराज काफ्लेको रचना र सङ्गीतमा

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल बेजिंग में आयोजन होमयवला 13वां बेजिंग स्यांगसंग फोरम में सहभागी होबाक लेल आइ ओहि दिस प्रस्थान कयलनि अछि। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयक अनुसार हुनक अनुपस्थिति में बलाधिकृत रथी प्रदीप जंग केसी कायम मुकायम प्रधान सेनापतिक कार्यभार सम्हालता। प्रधान सेनापतिक एहि भ्रमण सँ दुनू देश बीचक आपसी सैनिक सम्बन्ध विस्तार हेबाक संगे सैनिक कूटनीतिक मार्फत देशक परराष्ट्र नीति में योगदान पहुंचबाक विश्वास नेपाली सेना व्यक्त कयलक अछि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल मधेसक जिलाक विद्यार्थी अभिभावक जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा कर्मी सँ आयल सुझाव के प्राथमिकता में राखि आगू बढ़बाक बात बतौलनि अछि। सुझाव संकलन करबाक लेल राजविराज स्थित रहल केशव अनिरुद्धवती माध्यमिक विद्यालय राजविराज पहुंचल मंत्री पोखरेल कहलनि जिला अनुसार मौखिक आ लिखित फार्म दऽ कऽ सुझाव संकलन कऽ रहल छी। 3 दिन सँ मधेस प्रदेशक यात्रा में रहल जानकारी दैत मंत्री पोखरेल नया पाठ्यक्रम निर्माण करबाक नया शिक्षा ऐन नियमावली बनबाक क्रम में यथार्थ में आधारित सुझाव लक नया पाठ्यक्रम बनेबाक योजना रहल बतौलन। नया पाठ्यक्रम सीप में आधारित शिक्षा हेबाक सुझाव आयल ओ बतौलन। स्थलगत समस्या बुझलाक बाद समस्या समाधान करबाक क्रम में सेहो सहज भेलाक कारणे अन्य प्रदेश में सेहो सुझाव संकलन कयल जेबाक मंत्री पोखरेल बतौलन। मधेस प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयक रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान ठाकुर के टोली मंत्री पोखरेल के प्रादेशिक विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय सरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित अन्य निकाय सँ सहयोग समन्वय तथा एकीकृत प्रवेश परीक्षा आ प्रदेश में खोलल जाय वाला कृषि कॉलेज के यही विश्वविद्यालय अंतर्गत समावेश करबाक लेल ज्ञापन पत्र बुझौने छलथि। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल नेपाल चीन संबंध के बहुआयामिक क्षेत्र में विकास कयल जेबाक बात पर जोर देलनि अछि। फाउंडेशन फॉर पीस डेवलपमेंट एंड सोशलिज्म द्वारा राजधानी में आयोजित 2 दिनक कास्ट मंडप डायलॉग 3rd श्रृंखलाक आई समापन करैत ओ तीव्र आर्थिक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विकास कर रहल चीन सँ नेपाल के लाभ लऽ सकबाक बात बतौलनि। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक नेता खनाल दू देश बीचक संबंध के और समुन्नत बनबैत लऽ जेबाक बात पर जोर देलनि। नेपाल चीन संबंध के लेल बदलित अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय वातावरण पार्टी निर्माण आ सुशासन के अनुभव आदान प्रदान व्यावहारिक सहयोग बहुराजनीति व्यापार आ कनेक्टिविटी जलवायु उत्थानशीलता आ सीमा पार जोखिम घटबाक नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा जनस्तर के सहयोग आ युवाक भूमिका दोसर पुस्ताक मित्रता निर्माण संबंध में विचार आदान प्रदान भेल छल। मिथिलाक महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व चौरचन के अवसर पर धनसाक 2 स्थानीय निकाय स्थानीय छुट्टी देवाक निर्णय कयलक अछि। जनकपुरधाम उप महानगर पालिका आ कमला नगर पालिका आबयवला सोम दिन मनेबाक चौरचन पर्वक अवसर पर अपन क्षेत्र भीतर स्थानीय छुट्टी देबाक निर्णय कयलक अछि। जनकपुरधाम उप महानगर पालिका शुक्र दिन बैसल नगर कार्यपालिकाक बैठक सँ उप महानगर पालिका कार्यालय माथतक वार्ड कार्यालय तथा नगर क्षेत्र भीतर के विद्यालय में छुट्टी देबाक निर्णय कयल जनौलक अछि। उप महानगर पालिकाक अनुसार स्वास्थ्य सेवा दमकल शहर सफाई सहित अति आवश्यक सेवा सब छुट्टी के दिन सेहो नियमित संचालन रहत। स्थानीय छुट्टी संबंधी निर्णय संबंध में उप महानगर पालिकाक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञान हरि घिमरे सूचना जारी कऽ संबंधित सबके जानकारी करौलनि अछि। एहि क्रम में कमला नगर पालिका सेहो चौठे चंद्र चौरचन पर्व के अवसर पर कार्यपालिका माथत के संपूर्ण वार्ड कार्यालय स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक संस्था में स्थानीय छुट्टी देबाक निर्णय कयल जनौलक अछि। नगरपालिकाक प्रमुख विशेश्वर यादव के अनुसार पालिका क्षेत्र भीतर के संपूर्ण शैक्षिक संस्था तथा माथत के कार्यालय में छुट्टी देल गेल अछि। मिथिला संस्कृति पर आधारित चौरचन पर्व के धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण पर्वक रूप में मनाओल जाइत अछि। एहि पर्व में चंद्र के पूजा कर पारिवारिक सुख शांति समृद्धि आ दीर्घायु कामना करबाक चलन रहल अछि। मध्य प्रदेशक स्वास्थ्य संस्था में अस्थायी दरबंदी में कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी के कामकाज में खटबाक लेल आ हाजिर करबाक में रोक लगौलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बीतल अखाड़ मसांधर में अस्थायी दरबंदी में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी के लेल चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के अस्थायी दरबंदी प्रदेश मंत्री
परिसर सँ स्वीकृत भऽ कऽ नहि अयबाद धरि काम काजमे नहि खटेबाक लेल तथा हाजिर नहि करेबाक लेल निर्देशन देलक अछि। मंत्रालयक वरिष्ठ उप सचिव तथा सूचना अधिकारी राजेश कुमार मिश्र के अनुसार मंत्रालय बहादुर 24 गते मंत्री स्तरीय निर्णय करैत प्रदेश स्वास्थ्य निदेशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय तथा प्रादेशिक आयुर्वेद आ वैकल्पिक चिकित्सालय के ई निर्देशन देलक अछि। मंत्रालयक अधिकृत बच्चेलाल शाह तेली हस्ताक्षर कयल कामकाज में खटबाक तथा हाजिर करबाक संबंध में जारी पत्र में मंत्रालय अस्थायी दरबंदी स्वीकृत नहि हेबा धरि एहन कर्मचारी के कार्यालय में हाजिर करौला पर ओकर संपूर्ण जिम्मेवारी संबंधित निकाय के प्रमुख लेल जेबाक स्पष्ट कयलक अछि। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ जोखिमपूर्ण हिमताल फुटेबाक लेल सरकार आवश्यक तैयारी कऽ रहल बतौलनि अछि। आइ संचारकर्मी सँ बातचीत करैत मंत्री श्रेष्ठ विपद जोखिम न्यूनीकरण के लेल ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय अति उच्च जोखिम में रहल हिमतालक जलस्तर घटेबाक लेल गृह कार्य कऽ रहल जानकारी देलनि। जोखिम के मात्रा देख कर पानिक सतह घटेबाक निर्णय लेल ओ बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठक अनुसार ग्रीन क्लाइमेट एंड फंड GCS सँ प्राप्त सहयोग परिचालन का विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आ स्थानीय तह सँ मिलकर जोखिमपूर्ण हिमताल के पानि के सतह घटेबाक कार्य एहि वर्ष आगू बढ़ाओल जाएत। इसी मोड UNDP के संयुक्त अध्ययन अनुसार नेपाल में 21 हिमताल जोखिम युक्त अछि। कोसी आ गंडकी क्षेत्र में 4 अति उच्च जोखिम युक्त हिमताल रहल अछि। गुठी के पोखरि आ पोखरि के मुहार पर रहल अतिक्रमित संरचना हटेबाक लेल संबंधित व्यक्ति तथा संस्था के 15 दिनक समय देल गेल अछि। गुठी के जमीन संरक्षण तथा व्यवस्थापन के लेल गठित उच्च स्तरीय कार्यदल के प्रतिवेदन 2062 सहितक प्रतिवेदन द्वारा देखाओल अतिक्रमित पोखरि मध्य पहिल चरण में किछु पोखरि खाली कलाक बाद बाकी रहल पोखरि के चरणबद्ध रूप में अतिक्रमण मुक्त करबाक अभियान अंतर्गत थप समय देल गेल अछि। मुदा अनुगमन के क्रम में संबंधित व्यक्ति सब संरचना स्वयं हटाओल शुरू कैल आ थप समय मांग कैल जनबित कार्यान्वयन समिति 15 दिनक अतिरिक्त समय उपलब्ध करौलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन अंतर्गत राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष में बलराम प्रसाद सिंह भारी मत सँ ओ निर्वाचित भेला अछि। आइ भिनसर सम्पन्न निर्वाचन के मत परिणाम अनुसार अध्यक्ष में निर्वाचित सिंह 118 मत से प्राप्त कलन। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नवीन सिंह 71 मत प्राप्त कलन। अध्यक्षक दोसर उम्मीदवार देव बहादुर कटवाल 7 मत प्राप्त कल। निर्वाचन समितिक संयोजक धर्मेंद्र कुमार यादव जानकारी दिलन। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन, रूस, भारत सहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रक नेतागण आई भारतक राजधानी नया दिल्ली में सम्मेलनक दोसर दिन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विषय में छलफल कयलनि अछि। नेतागण सब विश्वक आर्थिक विकास, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा आ अंतर्राष्ट्रीय सहकार सहितक विषय में छलफल कयलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र सब बीच आपसी सहकार के थप मजबूत बनाओल जेबाक बात पर जोर देलनि अछि। ओ ब्रिक्स विश्व जनसंख्याक भारी हिस्सा आ विश्व अर्थतंत्रक महत्वपूर्ण भाग प्रतिनिधित्व करयवला समूह भेल बतौलनि। मोदी के अनुसार ब्रिक्स राष्ट्र सब विश्वक लगभग 50% जनसंख्या, 40% कुल गृहस्थ उत्पादन GDP आ 25% से अधिक विश्व व्यापार प्रतिनिधित्व करैत अछि। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेकिसियान सहित नेता सब सहभागी सम्मेलन में विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि आ विभिन्न क्षेत्रीय द्वंद्वक विषय में छलफल भेल बताओल गेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में परीक्षण के तौर पर एक तरफा यातायात शुरू, पूरी तरह संचालन में आने में लगेंगे कुछ दिन। सरकार ने जोखिमपूर्ण हिमतालों का जलस्तर घटाने की तैयारी की शुरू। भोटेकोशी बाढ़ से रसुआ, नुआकोट और दादिंग के 18 विद्यालय प्रभावित। और इंडोनेशिया में 243 यात्रियों वाला यात्री जहाज जावा सागर में लापता। अब समाचार विस्तार से। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत धादिंग के कृष्णभीर में अवरुद्ध सड़क को आज से परीक्षण के तौर पर एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया है। सड़क संचालन में आने के बाद राजधानी के लिए आवश्यक सामग्री लेकर भूस्खलन के साथ सड़क पर फंसे ट्रकों और गैस बुलेटों को कृष्णभीर सड़क से पार कराया गया है। नोबी से मुगलिन सड़क आयोजना पश्चिम खंड के इंजीनियर धीरज ढकाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल सड़क की स्थिति का परीक्षण करने के लिए ट्रायल के तौर पर एक तरफा यातायात शुरू किया गया है। सड़क की स्थिति को देखते हुए यातायात को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। इंजीनियर ढकाल ने बताया कि सड़क पर ग्रेवलिंग और कंपैक्शन का काम अभी बाकी है, इसलिए सड़क को दो तरफा यातायात के लिए खोलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। भोटेकोशी होते हुए त्रिशूली नदी में आई बाढ़ से सड़क के निचले हिस्से में कटान होने के बाद भाद्र 14 गते सड़क धस गई थी। राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग के इस हिस्से से रोजाना 14,000 से अधिक वाहन आवागमन करते हैं। भोटेकोशी बाढ़ से रसुआ, नुआकोट और धादिंग के 18 विद्यालय प्रभावित हुए हैं। इनमें से 11 विद्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे 93,73,00,000 रुपए के बराबर नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा तैयार त्वरित क्षति और आवश्यकता आकलन RDNA रिपोर्ट के अनुसार विद्यालयों के भवनों और शैक्षिक संपत्तियों को उक्त राशि का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 18 विद्यालयों के 56 भवन प्रभावित हुए हैं। इनमें 152 कमरों को आंशिक और 156 कमरों को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में विद्यालय क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए 4,23,35,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि सरकार जोखिमपूर्ण हिमतालों का जलस्तर घटाने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि जोखिम में मौजूद हिमतालों में ब्लास्टिंग कर पानी को बाहर निकालने तथा वैज्ञानिक तरीके से हिमतालों के पानी का स्तर घटाकर जोखिम कम करने के बारे में चर्चा आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आवश्यक तैयारी पूरी होने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मंत्री श्रेष्ठ के अनुसार ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF से प्राप्त सहायता का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण और स्थानीय तह के साथ मिलकर जोखिमपूर्ण हिमतालों का जलस्तर घटाने का काम इसी वर्ष आगे बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र इसी मोड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के संयुक्त अध्ययन के अनुसार नेपाल में 21 हिमताल जोखिमयुक्त हैं। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले हरितालिका यानी तीज के पहले दिन आज दर खाने की परंपरा है। तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं निराहार रहने के कारण आज शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन दर के रूप में खाती हैं और कल तीज के व्रत की तैयारी करती हैं। विशेष रूप से मायके और भाई अपनी बेटियों, बहनों और दीदियों को बुलाकर दर खिलाते हैं। महिलाएं तीज को साल भर अपने दुख, पीड़ा और परेशानियों को साझा करने वाले पर्व के रूप में भी मनाती हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: फोन में कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट न आएर दिक्क लाग्छ।
2: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G
1: भोल्टे वॉइस ओवर LTE। अब तपाईको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट, अझ जीवन्त।
2: SG वॉइस क्वालिटी सँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
1: यस्तो अनुभव मानव तपाईले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईको छेउमै हुनुहुन्छ।
2: र अझ रमाइलो कुरा,
1: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पीड इन्टरनेट।
2: क्लियर कॉल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
1: सेवा सुचारू गर्न आफ्नो फोनमा #444 हैश डायल गर्नुहोस्। 4G बोल्टे
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सरकार ने मध्य प्रदेश में तिहुवन विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान IOE का नया कॉलेज स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की पहुंच बढ़ाना और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेशों में जाने की बाध्यता खत्म करना है। नए कॉलेज के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विशेष अध्ययन समिति गठित की जाएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर स्थान तय होगा। सरकार की योजना अगले 3 वर्षों के भीतर पढ़ाई शुरू कर देने की है। कॉलेज को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रखकर अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने की भी सरकार की योजना है। रुकुम पश्चिम, सुरखेत, सुनसरी और तनहू में आज हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। रुकुम पश्चिम की सानीभेरी गांव पालिका 6 स्थित देवता खोला में जीप दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना में जीप चालक त्रिवेणी गांव पालिका 1 रुघा निवासी सुंदर खड़का मगर और सानीभेरी 6 निवासी करीब 16 वर्षीय प्रेमकला पुन की मौत हो गई है। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार नायब उपरीक्षक वेद बहादुर पौडेल ने इसकी जानकारी दी। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार आज सुबह वार्ड नंबर 6 के कोट गांव से गांव पालिका केंद्र सानीभेरी 9 सिमली होते हुए खलंगा की ओर जा रही जीप सड़क से करीब 50 मीटर नीचे गिर गई थी। इसी तरह सुरखेत में मोटरसाइकिल की टक्कर से 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। वीरेंद्रनगर नगर पालिका 10 सुरखेत बड़ी पार्टी की 55 वर्षीय आशा बूढ़ा की उपचार के दौरान आज सुबह मौत हुई। सुरखेत जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस नायब उपरीक्षक कविंद्र सिंह बोहरा ने इसकी जानकारी दी। इसी तरह सुनसरी के इटहरी उपमहानगर पालिका 7 बाल ग्राम स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग पर आज सुबह मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही मोटरसाइकिल कलवर्ट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार इनरवा नगर पालिका 3 के सागर रेग्मी और पारस थापा की मौत हुई है। जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी चंद्र बहादुर खड़का ने इसकी जानकारी दी। इसी तरह पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत तनहू के व्यास नगर पालिका 12 कमल बारी में आज सुबह ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत हुई है। मृतक की पहचान मकवानपुर के मनहरी गांव पालिका 6 निवासी 26 वर्षीय अजय थिंग के रूप में हुई है। जिला पुलिस कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। कपिलवस्तु नगर पालिका 6 बरमेली स्थित बाणगंगा नदी में बीती रात अचानक आई बाढ़ में फंसे 12 लोगों का सशस्त्र पुलिस ने सकुशल उद्धार किया है। बाढ़ के कारण नदी क्षेत्र में फंसी 11 महिलाओं और 1 पुरुष का उद्धार किया गया। सशस्त्र पुलिस उपरीक्षक गोपाल अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल नंबर 28 गण हेडक्वार्टर कपिलवस्तु के अनुसार उद्धार किए गए सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया में 243 यात्रियों को लेकर जा रहा विर्गो ट्रांसपोर्ट 8 जहाज जावा सागर में लापता हो गया है। आज तड़के करीब 2 बजे जहाज से अधिकारियों का संपर्क टूट गया। इंडोनेशियाई मीडिया के अनुसार अब तक 115 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि 1 की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी यात्रियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर समुद्री खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जहाज पूर्वी जावा के सुराबाया से दक्षिण कालीमंतन जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक जहाज के संचालकों ने खराब मौसम में फंसने की जानकारी दी थी। संपर्क बंजार मासिन से करीब 148 किलोमीटर दूर टूटा था। बचाव दल आधुनिक उपकरणों के साथ अभियान चला रहे हैं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां लगातार जहाज तथा लापता यात्रियों की तलाश में जुटी हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में परीक्षण के तौर पर एकतरफा यातायात शुरू, पूरी तरह संचालन होने में लगेंगे कुछ दिन। सरकार ने जोखिमपूर्ण हिमतालों का जलस्तर घटाने की तैयारी की शुरू, भोटेकोशी बाढ़ से रसुआ, नुआकोट और धादिंग के 18 विद्यालय प्रभावित और इंडोनेशिया में 243 यात्रियों वाला यात्री जहाज जावा सागर में लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।

भागवत 11 स्कंद को 20 अध्याय को 17 श्लोक ए यदि यो मानव देह माति मेरे लक्ष्य प्राप्ति में लगाए न संसार में बिताए वने तिमी आत्मा को हत्यारा भागवत बताउँदै छ शरीर को हत्या ठूलो कुरा मानिदैन आत्मा को हत्यारा हो भागवत पनि यही चीज को समर्थन गर्छ रामायण